न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, हमारी अंधूरी कहानी मेला की कौरत देने के नहीं टी ने अभी जीवित है ना अभी असंपूर्ण कथा बना मेलो की कौरत देने के नहीं टी ने अभी देना भी तरह करना

हमारी अधूरी कहानी अपे असंपूर्ण कथा पत किया क्यों लेते हैं ना दा मन कथा वध परिपूर्ण वाशे नवसन होने बहु कथा है तुले अवसान परिचय दे अंतिम पहली वाला असंपूर्ण कथा ने वही दी पुने हरी है ना कि अन्न को ඔබ කියව සාහිත්‍යය ඇතුළේ ඔබට හමුවුණු ප්‍රේමණීය පරිච්ඡේදය මොකද කියලා. 1715 95 95 95

मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सुबह मंदारम रात्रि अक्तरंगा नबे आदर है पीड़ित पन पदक माई सीतम सुपात करना है कि निवाला ये नुबा नुबे सुसुमीन हुस्म बैठन ने मताई मामा गे हुस्म होए ना अवंका अत्र मो गुच्चर अवंका इद दे याने अवंका इंदु मद बालागे मांगी नौक बंदार मांगे अवंका अत्र जीविते होए ना

आदरणीय तरंगात गानक नेतु हिटियाट दिन सती मास वलिन गेवियाने जीवित लस्सन मदवस एवारी मलस्सन प्रेमनीय परिच्छेद तमाई मां दान्ने मिच्छराई अनुंट सुवंद देन्न पुलवांग मेंने तमांगे हित अतुरे सुवंद पुर्वगत्त मिनिस्सुंट वितराई एच्छराई ए तमाई मम पुतक लियान्ने इन्न मिहिरिम वचना रमणी अनुंट सुवंद देन्न पुलवांग मेंने तमांगे हित अतुले सुवंद पुर्वगत्त मिनिस्सुंट वितराई

आदरणीय दुरुराटे को सेवा करने काफी साग रेमा आप विवेन कलत आप यह दवत कहने का मताला ये कथा आज दिया बैलन मामा दाकी ने तारुवत सुलेंगे का सुअंदीन और बलागे ट्रेन हैंगे मत आगे लोग के में ओया कर लाई थी ने मैं दुर्गे वागन ओया इनका मां बलागे ना रत्नपुर गिली मले

आंखें ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करती थी। ओ है मैं खेल लिखिटिया हम पन्ने रिलादरे के रूप कुछ चलो को आदर एक्टिव ना दायवेन में पापू है तो ले